0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? एवरीथिंग फाइन?
0: एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
1: हे आर यू इन लव?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: हाउ डू यू नो?
1: बाप साले। When the son is in love, the father just knows.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Rust, vasna, kaam. एक ऐसी वीकनेस है जो सिर्फ तुम में नहीं हर मर्द में होती है और इसे तुम्हें कंट्रोल करना है।